त्रिभुताश मिल संगत गुण प्रगाश जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत

श्रेष्ठ सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी।

साई जाता भावै सोई थिसी जो तू दे सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप भी छोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे

को कह। चौपाई संबत 17 सहस पणज अर्ध सहसम तेन कहज भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर्थत्र ग्रं सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने त्रया चरित्रे मंत्री पूर्व संबादे 405 चरित्र समापतम।

राख मोहे मन क्रम बचन विचार चापई मैं नग्निशय प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ कान सुने पहचान न तिनसाव लिबलागी मोरी पग इंसाव महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज बिचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुनचन शत्रु हमारे मरिय देग तेग जग में दो चल राखा मुहे और ना दल तुम मम करो सदा प्रत पारा

ओरकर बचन गहा सिर न्याय पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान कहो नित उठते आए हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावे के भगवंत दोहरा कालपुर की देह मो कोटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सज गुरु रजलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी बुरी समेत चापई।

न कोई। सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड बदी प्रथम सुख दावन त प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो लियो सुधारा दोहरा नेतर तुमके चरण तर सदर्व तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाह सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूरण कियो।

पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सीमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे अमेक ना जान्यो। श्री असपान

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां। राग रतन प्रवार परियां

इतनी सेवा प्रवान करने जी कीर्तन कर दे आप अल्लाह दी माफी बख्शे आप सब नु तीसरे पातशाह तन तन साहब श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे प्रकाश घर दे लख लख बधाइया होना भाई साहब भाई अगत सिंह जी आप जी नु इसे संबंध कथा राय जोड़नगे उन्हां पासों प्यार सका सरन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तकत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साधु संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे बड़भागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामदे दीवाना विच सतगुरां दी पावन बाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है वो विचार आपा सांझी कर सकीए कुछ समय वास्ते। अज तीजे पातशाह जी धन धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी उन्हां दा इतिहास भी सांझा करन दा जतन करांगे क्योंकि अज तीजे पातशाह धन धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब है। आओ विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस पावन शब्द की आपा विचार कर रहे हाँ वो पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी दी

सहस तव नैन नन नैन हह तोहे काओ सहस मूरत नना एक तोहे सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहे सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानण सब मह चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंग कौ होए जाते तेरा नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधो खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधो अंजले पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हों मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहुसोभ खंड

दर्शन तेरा राम हाँ देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना आवो सजना कर अपनड़े खड़ी तक्का कर अपनड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ

कलाम गुर सिखा की काल ताए पई नाम ते आवा नाम ते आवा जिन नानक सत गुर पूजया दिन हर पूज करावा पूज करावा जिते जाए बहे मेरा सतगुरु सो तान सुहावा राम राजे सो तान सुहावा राम राजे वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा घर दूजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तो मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे फरमान तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सोरठ राज विच अंग 611-12। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

प्रभु के सिमरत से दिनों नित प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु के सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिन से दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ सुनानी प्रभु के सिमरन दरगाह मानी प्रभु के सिमरन होय सुफला प्रभु के सिमरन सुफल फला से सिमरै जिन आप सिमराए नानक तां कै लागो पाए प्रभु का सुमरण सब ते उचा प्रभु के सुमरण उदर मोचा प्रभु के सुमरण तृष्णा बुझ जाय प्रभु के सुमरण सब किस सुज जाय प्रभु के सुमरण ना ही जम त्रासा प्रभु के सुमरण पूर्ण आशा प्रभु के सुमरण मन की मल जाय अमृत नाम रिद माहे समाय प्रभु जी बस साध की रसना नानक जन का दास दसना प्रभु को सुमरै से तनवंते प्रभु को सुमरै से पतवंते प्रभु को सिमरै से जन परवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बमोताजे प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगे रुवाला प्रभु को सिमरै से परोपकारी प्रभु को सिमरै तन सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरै बस हर नेरे प्रभु के प्रभु संत कृपा ते अंदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन कबहु न चूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सहज समानी प्रभु के सिमरन ने चले आसन प्रभु के सिमरन कमल वेगासन प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरै से जंजन को प्रमेया नानक तिंजा सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लाग भेद उपाय हर सिमरन पय सिद जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते हर सिमरन धारी सब तरनाम सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन क्यों सगले कार हर सिमरन में आम निरंकार कर कृपा जिसा बजाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अस्पदी जय मात पिता सतमीत न पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई जय महा प्यांदु जम दलाय ते केवल नाम संग तेरा चलाय जय मुस्कुल होवे अत पारी हर को नाम खिन माय उदारी अनक पुनचन करत नहीं तरा हर को नाम कोड पाप पर हरा गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाप हो सुख नेरे सगल सुर को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया ला करोरी बंधन पर हर का नाम जब तनिस्तर अनक माया रंग तिख नाम बुझावे हर का नाम जब त्यागावे जेह मार के हो जात अकेला ते हर नाम संग हो तो सोहेला ऐसा नाम सदा त्याइये नानक गुरु परम गत पाइये छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जब ते पार पराही अनक बिगन जाय आय संगार हर का नाम तत्काल उधार अनक जोन

पुंदान नौले कर्म करे भवासन जन मारे संयम साधन निमख निमख कर से कटावे तो पिहो में मैल न जावे हर के ना

सदगावे। जे को अपनी सो बालो राय सा संगे हो मैं छोरा, जे को जन्म मरण ते डरा सा जना की सरणी पराए। जिस जन को प्रभु दर्श पिया सा नानक ता कै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख पर।

अपने अमान कछ बार साव ले अज्ञानी मंद रोज करे अपनी प्रतीता पी खोवे बोरस का विश्वास न होवे जिसके वस्त जिस आगे रखे प्रभु की आगे मन

अभिमता माया मिथ्या राजो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ अस्थि अस्वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्त्र भगत के चरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रम पर निंदा सुनया मिथ्या पर दर्भ को हरिया मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिया रूपार मिथ्या रचना पोजन अन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन्य पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन

रहत अवर कथे अवर कुमावत मनि प्रतिमुख गण लावत जान अप्रभु परबीन बाहर पेक न काहू पीन अवर उपदेशे आप न करे अव जावत जन मैं मरे जिसके अंतर बसा निरंकार तिसकी सीख तर संसार जो तुम पाने तिन प्रभु दाता नानक कुंजन तन पराता करो बेनते पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप माने आपे आप आप करतन बेरा किसे दूर जना

मने अंदर दे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ वैसमर तस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याई त्या मनजोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे ज्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख सही सोई।

जा सका है तो जय प्रसाद सगल सिदर ठाके मनसर निपुर ठाकर प्रताके जय प्रसाद दुखो न पहुचे मन सा सिमरो प्रभुचे जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताके भगत करे जय प्रसाद पोखन पैरी जय मृत सिमरत क्यों आलस की जाए जय

तेरी रखाए। जय प्रसाद करा अनुभव दान मन आठ पर करते का ध्यान। जय प्रसाद चुआ चार व्यवहारित प्रभ को सा चेतारी। जय

जय प्रसाद सुना करण ना जय प्रसाद पे खै बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुसह जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चलें जय प्रसाद संपूर्ण फलाएं जय प्रसाद परम गत पावें जय प्रसाद।

तथा से जे प्रसाद सबके गत हो नानक आप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपाते हो प्रगास प्रभु दयाते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दयाते मति उत्तम होए शर्म धान प्रभु तेरी मैं आप कछु न किन्नु ले।

मन साचा मुख साचा सोए अवन अपेक्षा किसवन कोय नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नर ले जैसे जर में कमलिया ले ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दो जैसे सुर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट सुमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह तेर देख जो वसुदा को खुद को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ नानी दियो पाव कैसे सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश जैसे तरु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र शत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने सबसे नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानी जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सगल के रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी के सब परमया ब्रह्म ज्ञानी तकज बुरा न पाया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म

सकल निस्तारय स्पदि मिथ्यानाय रसना परसमन में प्रेम निरंजन दर्द परतरे रूपन पे कह नेत्र साकेत संसंग हेत कर्ण सुन काउ के नंदा सबते जान आपस को मंदा गुरु प्रताप क्या पर हर मन की बासना मन ते टराय इंद्रे जेत पंच दोग ते रहत नान कोट मदे को ऐसा परस बैसुनो सो जिस उपर सो प्रस्थान बेसन की माया ते होय पैन कर्म कर तो है न कर्म तस बैसनो का निर्मल धर्म काहु फल की इच्छा नहीं बासे केवल भगत के संग राचाय

सुखम जाने असूल तो वर्ण को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चो वर्ण में जप को नाम जो जो जपे तस्की गत हो सा संग पावे जन को

अपने दाको आप कृपा करे ते दाको सब सो जी पर सकल संगातमो दास ऐसे जुगत नानक राम दास प्रभु की आगे आत्म हिता वह जीव मुख सौ कहा तैसा रक्त सब सो गो सदानंद नहीं भी होगा तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा

कई कोट है पुजारी कई कोट चार बिहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन पर मैदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपित रोते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट कव का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याम नान करते कांत न पावे कई कोट पाए अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट आभे गातम ने कोर कई कोट पर द्रव कोर कई कोट पर दुख न कराए कई कोट माया शरमाए कई कोट पर देह प्रमाए जित जित लाभ तित तित लग्न नान करते की जाने करता रचना कई कोट सत जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखे सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पुण पाणी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशिर सूर्य नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर सगल

कर्ण करावन करना जोग जो पावे सोई होग खन में थाप थापन हरा अंत नहीं किच पारा बारा हुकुमे तार दर्रा हावे हुकुमे उपजय हुकुम सुमावे हुकुमे उच नीच व्यवहार हुकुमे नंग प्रकार कर कर

जिसके अंतर्राज अभिमान सो नरपति वसुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत आपस को

अवतारे अनगत बस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर फिरे अवतार अनग जतन करया तमने दरबार दुर्गा को कैसे गवाए आप

रे खाप खाप मारा है, बिना संतोख नहीं को राजा है, सुपन मनोरथ व्यर्थ सब का जाए, नाम रंग सर्व सुखो बड़ पागी किसे प्राप्त होए, कर्ण करावन आप सदा सदा नानक कर जा।

कोट मदाय के न बिरले चीना पला पला पला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल त्रिवाणी कड़कड़ सुनी सर्वन बखियाणी

तराय। संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन का जोन लवाए, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संतन के संत के दुखन ते जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलाए, संत के दुखन सब को चलाए, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच न जाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानी सुन पावे ताओ विगत पाए, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक खंड न पाए, संत का निंदक मात यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत का निंदक सर्व रोग, संत का निंदक सदा बिजोग, संत का निंदा दो

सदाभिकारी संत का दुखी जन्म मरा संत के दुख न सुखते डरा संत के दुखी को नाही ठाउ नाने सुन पावे ताले मिलाए संत का दुखी अद बीते टूटाए संत का दुखी किते काज ना पहुंचाए संत के दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी जुड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोता ज्यो साध बिना मृतक की लोथा संत के दुखी के जड़ के जनाही आपन बीजा पे ही खाए संत का दुखी को अपना रखना हार नाने सुन पावे ताले उबार संत का दुखियों बिल लाए ज्यो जाल बेहून मछली तड़पड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पावे के दन नहीं त्रापाए संत का

थिया। संत का दुखी बिगड़ो पोए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी न मरे ना जीवाइए, संत के दुखी की बुझे न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा।

संसार मंत्र मुख बोल हर मुखी सदा सदा जान ते सुखी एको एक एक बचान तुदियो सोजी जान नाम संग जित का मन मान्या नान त्रे निरंजन जान्या गुरु प्रसाद अपना सुज जाए तिसके जानो तृष्णा बुझ जाए

पांच त्यावे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभापना कृपा करे तिस सो सेवको किसते डरे जैसा सात सदाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया गुरु प्रसाद सब बुझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई असथूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलता पी करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञा करी तारी सब श्रेष्ठ

सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़ भागे। नाम जब पाव है विश्राम, नाने तिन पुरख उत्तम कर मान। जो किछ करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। सह सुभाय हो वै सो होए, करने हार पछाण सोए। प्रभ का किया दन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिससे

गाबारे जस गुर प्रसाद तुट हो रोग नाने सो जन सदा रोग जो मंदिर को थम थमन त्यों गुर का शब्द मन यस थमन

कीर्तन गाइए। अनक भगंत साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गही संत दरियाया सर्व सो नान ते पाया मृत

चंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक मन अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण वरण जाका नेत्र भोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद्रो मंगल साध्या कह सर्व थोक सुने करता कह राज में राजोग में जोगी तमित मिश्र गिस्त में भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुर का किने अंत न पाया

रहे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पावन नाम के संग उदर सुन सरवन कर कृपा जैसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सदा की वाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाके रचना सत मूल सत सत्योत पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बधाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश सत नृत बुझै दे कोए नाम जब ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपै जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करने हारु अवन भूत करत विचार करते किमित न जाने किया नानक ज्योत पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझया तिसाया स्वाद प्रभु के रंग राच जन रह गुर के वचन पदार्थ लह ओए दाते दुकाट नहार जन के संग तरा संसार जन का सेव सोवड़ भागी जन के संग एक लिव लागी।

रंग सेवक प्रपालन हर सेवकी रखेन्द्रकार सो सेवक जिद्या प्रवतार नान सो सेवक सामार अपने जन का पर्दा ढाक अपने सेवक के सर पर राख अपने दाखो देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राख ताकि गतमत को न लाख प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे जो प्रभु अपने सेवा लाया नान सो सेवक दर्द प्रगटाया निके गिरी में कल राख पसम कर लश्कर कोट लाख जिसका शासन काटते आप ताको राख दे कर हाथ मान जतन करत वो पात तिसके करत बिरथे जात मारा न राख न कोये सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विंडाणी बारिंग बार बार प्रभ जपिए पी अमृत एहो मन तंत्र पियाए नाम रतन जन गुरु पाया तिसके चरण नाइंद चाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सकर नाम का संग

एक न जानो आठ पैर प्रभ सहजू रे को नाने से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मंथन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु बचाता सो जन सर्व का दाता तिजके शरण सर्व सुख पावे तिजके दर सब पाव मिटावे अवर सियान सगली छाड तिजन की तू सेवा लागो आवन जाना हो तेरा नानक तिजन के पूजो साध पैरा सलोक

के मत ले भेष विश्वे गुरु कामन बने सो से परमेश्वर की गत जाने सो सदगुरु तुसृदय हरनाओ अनकबार गुर को बल जाऊ श्रमधान जी का दाता अठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म कैप नहीं कज परम सह सियान पलिया न जाइए नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइये सबल दर्शन पे खत पोनीत पर सत चरण निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगाह गवै सुनकर वचन करने आगान मन संतोका तम पतियान पूरा गुरुआ खोजा का मंत्र अमृत दृष्ट पे खे होए संत

निष्पति संत जनामिर करो विचार एक सिमर नाम याधार अवरपा समेत बसार चरण कमर दमायुर तारो करण कारण सो पर समरथ दुर्कर गौ नाम अरवथ एव तन संचो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माय सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कंठोड़ तावे सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बाछ मीत सो सुख साधु संग परी जिस बाको करें भली करनी सासो बापज हर की सरणी

बृहस्पति जाचक दंजा छ प्रवधान कर कृपा दे बोहर नाम साधना की मांग तुर पार ब्रह्म श्रद्धापुर सदा सदा प्रभ के गुण गाव सा प्रभ तुम्हें त्याव चरण।

वैसं एक बार दिद्य कर्मया गुरुप्रसा नाम जपलया ताकी उपमा कही न जाए नानक रया सर्वसुमाय प्रभ संदीन दयाल भगत वचल।

मेरे शरण पूर्व भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोग पाए एक नम करके गुण गाय अनक राय भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर नीत भली स्वकर्ण स्वभा।

तम नरगुण प्रभसाई सुभाय तब शिव सगत कहो कत थाय धवाप आप अपने जो तर तब कवन डर कवन कात डराए आपन चलताव करने हार नानक ठाकुर कामया पार अपना से सुख आपने आसन था जन मन को हो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब भक्तों को त्रिभव एका तब चित्रगुप्त

कौन या अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदी तय चल चर लगत को किस। जय जो स्वरूप जो संग समाव तय किस कवन त्रिवताप। कर्ण करामन करने हार नान करते कर्ण सुमारे। जब अपने सो बाप संग बनाई तब कवन माय बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला पे परवींत वेद देव कह कौचीन। जब अपने आप आप उतार है तब सगन अब सगन का विचार है। जय अपन ऊच अपने आप निरत कौन ठाकर कुन कहिए चेरा। विस्मन विस्म रह विस्मत नानक अपनी कद जानू आप। जय आचल छेद पे सुमाया वहां किसे व्याप माया। आपस को आप है आदेश तय गुण का नाई प्रवेश। जय कह के भगवंता त कौन है चिन्ह किस लागे चिंता।

तपरिकावल को नरको स्वर्ग वंशावत आल जाल माया जंजाल हो मैम परम व्यापार दुख सुख मान अपमान प्रकार के बखियान आपन के लाभ कर देखा खेल संकोच तो नानी के क्या जय भगत भगत आप जय पसरा पसार संत प्रताप दोहो पाका पे धन तनी उनके स्वभाव न बनी आपे कौत करे आनंद चो जो आपे रस भोजन जो जिस पावे तिथि अपन नाय लावे जिस पावे तिथि खेल खिलावे

सो समदास तत का बेता नानक सुलसिष्ट का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई ना मारे सो मुआ जिस मन हो विसारे तिस तदवर का को दाए सब सर निरा एक निरंजन राय जी के जुगजा के सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण दान बेअंत अपार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपर हो कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतरदा में रहो बे आप प्रतपाला जीवन भवपात जो जो रचियो सोत सह त्यात जय।

पैर ये लोक सुखी है परलोक सुहेले नानक हर प्रभा पे मेले साध संग मेल करो आनंद गुण गाव परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो दार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुहाओ आठ पैर पर पेखो नेरा मिटिया ज्ञान बिन से अंधेरा सुनब दे सिर दे बसाओ मन छे नानक पल पावो हालत पर दोले स्वार राम नाम अंतर तार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसन बसत साज परीख्या मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर मंत्र पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर गए के तुम्हारी एक

ताके कार्य पूरा मात पूरी अम्र जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा से परवान अंतर जामे प्रभु प्रधान जसवन बस सोहत निहाल ताके निकट न आबद काल अमर पे

सु अस्पदी संत संग अंतर प्रवडिठ ना प्रभु का लागा मिठ सगल समग्री एक कटुम्बा है अनक रंग नाना दुष्टा है नौनद अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम सुन सुमाद अनह तैनाद कह न जाय अचर्द विस्माद तिन देखिया जिसाब दिखाए नाने तिजन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कड़कड़ व्याप रहा भगवंत तरण माए आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रत्यय पाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम पौन पानी बैसंतर माए चार कुंडल जिसे समाहे तिस्ते पन नय कोठाऊ गुर पसा नानक सुख पाऊ वेद प्राण सिमरत में देख ससियर सुर नखत्र में एक बाणी प्रभु के सबको बोले आप डोल न कबू डोले सर्व कला कर खेला खेल मोल न पाय गुण अमोल सर्व ज्योत में जाके ज्योत तार रायो स्वामी ओत पोत गुरपसा परम का नास नाने तिन में विश्वास संत जनक बेखंसा ब्राह्मण संत जनक हृदय सब धर्म संत जना सुनो सब बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जात तिसके रहत सत बचन साधु कहत जो जो होए सो सुकुमान कर्ण कराम हार प्रभ जाने अंतर बस बार पियो नान दर्शन देख सम्मोही आप

किन कछ करा पला कर तू त्यद निकी आपै जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोता अपन संग राच ताकि गत मित कहीं न जाए दूसरो ता सोजी पाए।

चंद आसन त्याग तरंग संत जना के तुर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सा संग अगन सागर तरह हरजन के बल हो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग पद परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित बहु नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पुंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलिक लाल रतन सुनत कमावत सोच उदार आप तराय लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मल्ला गाल रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद कराय प्रभु का जय।

संरचना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभेखे पमारी प्रभ के करो संत मित सावधानी का ग्रथित सुखमनि सह गोविंद गुण नाम जिसमन बस सोहोत निदान सर्व इच्छा ताके पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब

शांत हृदय नव नित बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश साब कै मत सकल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पन गुरु नानक नाम बचन मन सुने यो निदान जपै मन कोय सब जग में था के गत होय गुण गोविंद नाम तुनवाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जम ते छुटाए जाके मस्तक कर्म प्रभाए साध सरण नानक ते आए जिस

ओंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे हे सरभार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जेव फरमाए तेव तेव पाहे जेता कीता तेता नाओ बिन नावे नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार जो तुद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सुखेह मूत पलीति कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए तो

हो अंत ना जाने कोई। बहुता कही है बहुता हुए वड्डा साहिब ऊंचा था ऊंचे उपर ऊंचा ना एवड ऊंचा होवे कोई ते ऊंचे को जाने सोए जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तेल ना तमाए केते मंगह

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जीव ते सुभावे ते वै चलावे जीव होवे फरमान। ओह वेखै उन्हां नदर ना आवे बहुता एहो विडाण। आदेस तिसै आदेस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार। कर कर वेखै

लाख हो वह लाख बीस। लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीस, ए तुराहे बत पवड़िया चढ़िया होए इकीस। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस।

लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पशाह को सी सनवायो कौबतान को पूजत है बस गुमरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कौबतान को पूजत है पास कौमिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है पातशाही दसवीं कवियो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा ताब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो ब्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै कर तारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैर नकाओ आज संघरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हे शाड कोई अबर ना त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हू जो सदा हमारे पछा श्री अस तुझ जू करिय हो रचा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो बरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछ

एहो मन तै उदेसा सुन मीता हो तेरी शरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा।

चार वेद होए सचार पढ़े गुणै तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुख अंतर पाए

जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी साहिबां दी रहमत होई है आप संगतां ने। श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन गुरद्वारा साहिब फ्री माउंट तों सरवण कीते हन। आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन रागी भाई गुरमेर सिंह जी। श्री दरबार साहिब वाले समूह जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण सतगुरु साहिब जी वालों बख्श मुख वाग दी कथा आप संगतां नूं सरवण करवा रहे हन। सत्कार जो ज्ञानी अगंत सिंह जी उन्हां पासों बड़े प्यार नाल सरवण करिए जी। सो नाल ही आप संगतां नूं बेनती है जो कि साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज उन्हां दे शहीदी पुरब मनाउंदिआं होइआं अते जून 1984 दे समूह शहीदां नूं याद करदिआं होइआं कलूकारा दिवस मनाउंदिआं होइआं जो हर साल पंथक जथेबंदियां वालों गुरु घर दीआं प्रबंधक कमेटियां वालों अते संगतां दे संजोग नाल जो सैन फ्रांसिसको विखे नगर कीर्तन किए जाते हैं इस बारी भी जो 6 जून दिन शनिचरवार उथे हो रहे हैं नगर कीर्तन। सो आप संगत ने उथे वो तो हाजरी भरनी गुरु घर विखे इस संबंध में जो सुखमनी साहब जी के जाप संगती रू चल रहे हैं सहज पाठ चल रहे हैं आप जी हाजरी भरिया करो जी। सो आओ कथा नाल जुड़िए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

दर्शनी स्नान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना दे सिखां दा माननी वा मत उची मत पादे राखिया अकाल पुरख वाहिगुरु।

पांचो संग वरंगन लाव बैरारी करनाटी तरी गबरी गाव आसावरी ते पाशे सिंध वी अलापी श्री राग स्यों पंचो थापी।

असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ ए असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचारे असंख सती असंख दातारे।

असंख अमर कर जाहे जोरे असंख गलबड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश माल पख खाहे असंख निंदक

वह समुंद न जानिए, समुंद सहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मन होना विसर है।

सवारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इदासन बैठे देवत्या दर नाले गावे है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध बेचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित।

दुख सब विसारणा, अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारणा। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।

एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया यो तिन कै मन वसिया जिन तुरहों लिखिया आया इक फिर कनेरी करह गल्ला गल्ली किने न पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित सिओ पवित संगत

कबियो बाच बेंती चौपई हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सब तुम काबहो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी बसे मोरु परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरी है पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तो मैं चाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बरचाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरिया है मरण काल का त्रास ने भरिया है हुजो सदा हमारी पच्छा श्री अस्तुजु करियो रक्षा राख लिहो मोहे राखन हारे साहिब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन का जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन का

हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत परे बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है घट घट के पट पट की जाना है जा बुध करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब या करख करत हो कब हो तो मैं मिलत दे तर सब हो जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत नरालम जानत बेद भी दर आलम

0: इतने ही सेवा प्रवान करने जी आप सब धन धन साहब श्री गुरु अमरदास महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े दियां लख लख वधाइया हो जी। आओ अगला प्रोग्राम श्रवण करो भाई साहब भाई अगत सिंह जी आप जी ने कथा रहे जोड़ दिने उन्होंने पास प्यार से श्रवण करो जी। बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
2: गुरु ग्रंथ साहिब जी दी निघी गोद विच सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी कीर्तन का आनंद माणते हुए भाई साहब हुणी बड़ा ही दस पिन्ना कीर्तन आप संगतां नूं सरवण कराया है। मैं धन्नवादी हाँ सत्कारयोग ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी मुख सेवादार अते ज्ञानी जगतार सिंह जी ज्ञानी जगजार सिंह जी जिन्हां ने कीर्तन द्वारा हाजरी भरी है। मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। गुरु प्यारी साध संगत जी जिमें कि बेनती करते आ रहे हाँ तो कह कर रहे हाँ आप संगत के चरणों में बेनती है कि जो 6 जून जो अपने नगर कीर्तन जो पातशाही रैली सैन फ्रांसिस्को विखे हरेक साल की तरह निकलिया जा रहा है बेनती है कि बच चढ़ के आओ। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदा दे सरताज गुरु उन्हों का शहीदी दिहाड़ा 1984 के समूह शहीदा की याद बच्च ये जो प्रोग्राम हरेक साल असी शहीदा याद करते हाँ तो बच चढ़ के संगत आदिया ने इस बार सारे गुरद्वरे जथेबंदियां रल के जो फिर इस साल जो 6 जून नू दिन शनिश्चरवार आता है उस दिन आप सारे ने उत्थे गुरु के चरणों च हाजरी लवानी

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप जी सारे वडभागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दे पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना यह मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ गुरमत विचारां दी आपा सांझ पा सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मंगलाचरण दे रूप विच

अंदर परमात्मा दा नाम वस गया। प्यारिया ध्यान रखी, इन्ना कीमती है परमात्मा दा नाम के जिस मनुख दे हिरदे दे अंदर एक किनका मात्र भी वस जावे उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती, बयान नहीं की जा सकती। इन्नी वड्डी गल। मैं दो भगतां दी गल सांझी करां आप जी नाल, भगत नामदेव जी ते भगत तिलोचन जी, ये दोनों समकाली भगत हुए ने। दोहां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। दोह बड़े मित्र ने दोनों आपस च। भगत तिलोचन जी कहने भी नामदेव तेरी मैं वड़ियाई बड़ी सुनदा, भी तू नाम बड़ा जपदा, तू नाम जपदा, पर मैं तेनू कदे नाम जपदा नहीं देखिया। मैं तां सगो ये कहिंदा भी मैं जद भी देखदा तेनू मिलना हुंदा, तू तां अपने कामकार नूं ही लग्गिया हुंदा, तू नाम कद जप लैंदा है।

पग सागर समग्री तुमरे सूतर तारी तुम ते हो ऐसो आग्या तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नूं सिमराऊं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया वे ताई सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तरके। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपिया वंड की छकिया देख चलाई तेग बाही देख के अनडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके। बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल चरवाए सिखी सदक किसां स्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके। बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख हो गए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रिथ्या रहा है देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दी माण सतगुरु नताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। अरदास बेनती है सतगुरु जी आप जी दियां महान बख्शिशां रहमतां दा सदका पावन हजूरी विखे दीवान सजे अज दे विशेष दीवान धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाही दा प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदिआं होइआं साजरी हन। सजे हुए दीवाना विच अमृतमई बाणी दी शब्द कीर्तन कथा विचारां होइआं बाणी पढ़दिआं विचारदिआं अनेकां भुल्लां हो गईआं होणगीआं अलपाक जाण के खिमा करनी अगों वास्ते समत बख्शणा अमृतमई बाणी दा भाव दर आईआं संगतां दे हिरदिआं चों सावणा सरबत दीआं तिल फुल पेटावां दर प्रवान करनियां दरों करों अमृत वेले दा जागरना नाम दान सिखी सदक भरोसा दान सरबत दी कारज रास करने शुभ मनु कामना संपूर्ण करनियां समूह संगतां वल्लों धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे शहीदी पुरब दे संबंध दे विच श्री सुखमनी साहिब दे जाप कीते ने सतगुरु जी बाणी पढ़दियां होईआं भुल्लां दी खिमा बख्शणी अगों वास्ते समत बख्शणा समूह संगतां दे सिर ते रहमतां भरे हथ रखणा चढ़दियां कलां दी दात बख्श के कृतार्थ करना पावन दरबार दी हाजरी भरदियां गुरसिख परिवारां वल्लों अरदासां बेनतियां ने सतगुरु जी दर घर दे सेवक काका अंगद सिंह गरेवाल दे जन्मदिन दी खुशी अंदर परिवार वल्लों बच्चे दी चढ़दी कला लई अरदास बेनती है सतगुरु जी मेहर करनी
ਦੀਰਘਾਰ ਜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਗਿਆਕਾਰ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਗਿਆ ਵਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲੋ ਚਾਹੈ ਰਾਜ ਕਰੀਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।